0: जाएगा। आप इस कार्यक्रम को ऑनलाइन भी सुन सकते हैं planetaudio.org.nz/saivachanamrit। ये कार्यक्रम एक सप्ताह तक ऑनलाइन अवेलेबल है।
1: Listen for the latest news, interviews, and the good music. Listen to 104.6 Planet FM every Saturday night from 8:30 p.m. for Radio Akwaaba.
2: Or you can listen online at planetaudio.org.nz/radioakwaaba.